ले कई माँ माँ कई रो प्यो ढोड़ माथे रही तीनी रो प्यो झंग मत रही तीनी रो प्यो झंग मत रही।